फ्रीज साफ करो चले अग नहीं मिल रही दूरों एक देखिया मकान विच लोह है रेतले टिब्बे सी अजमेर शरीफ वल एक बहुत वड्डी अटारी ते विच जग रही सी लम फ्रीज साहब ने जाके दरवाजा खड़काया गृहस्थियों भलियो लोग को वो कंजरी दा घर बेसवा है बेसवा कहने लगी फ्रीज साहब ये तो बड़ी वड्डी हस्ती है पहुंचने वाली और पहुंच चुके ने वो भी उसे पीर नू जाके जपदी सी मुदरे तो बाद दरवाजा खोल जी कौन हो मैं फरीद किस तरह आए हो ये कंजरी दा द्वारा है बेसवा कहने लगी मैं अग लेना है अग दे सकनी कहने लगी भला वेखा फरीद पक्का भी होया कि नहीं कहने अग ते दे दांगी पर इसकी कीमत देनी पड़ेगी फरीद कहना जो मर्जी लल्ला मेरी जिंद भी आदर है अग दे दे कहने अख दा डेला एक दे दे लिया फिर कोई चीज उन्हें कर दिती फरीद ने अख दा डेला कट के तली ते रख दिता तो उत्ते पट्टी बन ली कंदरी कहन लगी या अल्लाह तेरे जपण वाले कमाल मुर्शिद वाले ने उन्हें डबी दिती आन के लकड़ा बालिया ते मुर्शिद नु इशनान कराया मुर्शिद होए खुश फिर गुरु सिख दे उते खुश हो जाए ते कोई फिर चीज रखदा गुरु कोल सती प्रकार दा की बल्कि रिधियां सिधियां दे दिंदा लै साम पाई जा तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए अज जदो इनी कृपा होई बड़े प्यार नाल मुर्शिद नु किया महाराज सेवा कहन लगे फरीद तेरी सेवा पूरी होई है अज किस तरह पानी गर्म कीता जी आप जानी जान अख ते पट्टी क्यों बनी हो तो फरीद कहन लगा आ गई है इस करके पट्टी बनी है आ गई आग कहंदी जिदे जी चीज चले जे तो वापस आ जाए उन पट्टी बनन दी की लोड पट्टी खोल जो खोली ते अख नौ बरना चरण फड़ ले फड़ ले चरण बाबा नंद सिंह महाराज मैं एक वचन हूं करने बाबे दिहाड़ी करनी है पर किस तरह बाबा जी गए दिहाड़ी करन ते कुछ लेट पहुंचे लेट पहुंचे पर उन्हें वक्त ज्यादा लाया बाबे कहन लगे मनुखा जन्म है इंज ते इंजी चले तू पेट बदले तो दिहाड़ी बहुत है ते वक्त मिलिया कोई नहीं मालिक दी ड्यूटी भी पूरी देनी है जिन्हें चर पूरी किरत ना करेंगे इन्हें पैसे नहीं देने बाबे कहन लगे आज तो रोटी खानी नहीं मंग के खा लिया करांगे गृहस्थी थोड़े ने बाबा नंद सिंह जी जदों तुरे अमृत वेले एक जिमीदार दा घर सी दरवाजा खड़काया जिमीदार दे घरों छा वेला अपने मालक नूं खवा रही सी ते हड़ी तोरना सी दरवाजा खड़काया भाई एक प्रशादा दियो ऐसे महापुरख मंगण दी भी जांच नहीं सी शादा दियो वो गृहस्थिन कहन लगी ये कोई मंगण दा तरीका मंगते दा प्रशादा दियो ना कोई गल ना कोई बात दरवाजा खोलिया ते कहन लगे प्रशादा तेरे वास्ते जिन जाके दो बिघे पैली बोनी है उन्हू खुआवा पहला के तनु हटे कटे नू तो जवान है गा आप किरत कर जाके बाबा जी कहन लगे लान तो मना तेनू सवेरे सवेरे गृहस्थियां दे बचन सुने नी एक प्रशादे बदले कहन लगे खाना ही नहीं आज तो जे आप निरंकार खवाएगा तो खाना नहीं कहने बाबा नंद सिंह जी तुर पे ते जिमीदार कहन लगा पागा वालिए मंगण गया सो मर गया मंगल मूल न जा तेरे दरबारे ते आया सी की एक फकीर नु प्रशादा दे दिंदी जा नसके जा ਉਹ ਜੱਟੀ ਜੋ ਨਾ ਨਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲਾਮ ਹੋਇਆ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਬਾਬੇ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ

तो पहला शब्द राग जैतसरी महला नौवां ते ताल चपताल दे अंदर आप जी नूं सुनाउण दा यतन करांगे।

ठाकुर अर्जुन पातशाह श्री सुखमणि साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, कहिंदे ने जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहिंदे ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, ना तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरकां दे विच नहीं जांदा, सिमरन करन वाला, ते जिहड़ा सिमरन करदा नरकां दा भागी नहीं बन सकता। इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया है।

आठ दाम को छिपरो होए ओ लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीत

जोड़े कीर्तन हुआ रैन सुबाय छड़ न सके संत जन राज द्वार न सेव कुमार।

देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे नाल तीर्थां दे भ्रमण करदे करदे, ते जा करके द्वारका नगरी तो थोड़ी दूर बाहर

ते क्या ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आन वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है ओ नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है। मगर नामदेव इनकारी हो के

रामदेव हुण तूं अपनी प्यास बुझा लै, तेरी नारायण ने सुन लई। आइंदा समें विच जेड़े भी इस राह तों गुजरनगे, ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके,

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश भलो ना कीनो तां ते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नूं बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

आज बने हो सारस्वती भक्ता करके सारस्वती भक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हो जुग

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देण तों इनकार ते नहीं करदा, पर असीं मंगणा किवें है ते मंगणा की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नूं, कमजोर नूं कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नूं, गरीब नूं कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत अन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। कहिंदे ने फिर सुत, हे परमात्मा पुत्र भी घर विच चाहिदे, क्योंकि पुत्र भी एक निशान है, उहदा भी घर विच होना बड़ा जरूरी है। धन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं, ते तां भी दुख है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मन मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, किस लिए मांग रही? साजनो तू मीत मेरो, गह तेरे सबके। तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे कोलो मंग रही हां। सतगुरु कहिंदे ने ये मंग जायज होगी, क्योंकि तू नू अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई जी, उन्हू अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंगना, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। तो मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चात्रक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है, ना दिन विंदा है ना रात विंदा है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चात्रक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

कह रहे हैं नहीं है, चला जा। कहना नहीं कुछ ते दे के तोर, कुछ ते मेरी चोली पा, मैं तेरे को लाए बगैर नहीं जाना। इना टीठ बनदा है कई बार मालिक किनिया गल्लां करदा, देन वाला बहुत गल्लां करदा पर ओ बर्दाश्त करे हर गल नूं सुने, क्योंकि टीठ बनदे। जब तक टीठ नहीं बनदा तद तक दात नहीं मिलनी। पावो दान टीठ होए मन, टीठ बन के मंगी जा मंगी जा मंगी जा। हुण गल आ गई तीसरे गुण दी। तीसरा गुण है जी मंगता डर ना छड़े। किवें ताटी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े। दर फड़ के बह जाए ते दर ना छड़े। हे मालक मंग रहे टीठ बन गए, दर नहीं छड़ना, दात लैके जान। पर हुंदा की है, असी सिर्फ मंगना ते जान लेने हैं, मंगना आउंदा नहीं। मंगना की है ये भी पता नहीं, मंगना किवें है ये भी नहीं जानते। ते जिहड़े मंगते दे गुण ने वो ते साडे अंदर है ही कोई नहीं। जे होवे ते किसी अंदर एक आ जांदा लो जी मंगना है, मंगी जांदा है। कुछ समा मंगिया नहीं मलिया चला गया। किसी विच दूजा गुण आ जांदा है, टीठ बन के बह जांदा है। इतना टीठ बन गया कि मंगी जा रहे हैं नहीं मिले, आओ भी चला गया। तीसरा गुण असी ग्रहण नहीं करते कि जेड़ा बड़ा जरूरी है। तीसरा गुण है मंगता दर ना छड़े, क्योंकि कई बार हुंदा कि असी मंगी जाने टीठ भी बन जाने, जो दात लैण दा समा आउंदा उदों असी दर छड़ के चले जाने, बस उदों सानू ओ दात नहीं मिलदी। ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े, दर नहीं छड़ के जाना भावे कुछ हो जाए। साहब कहने ना आखिर विच

मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए।

रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज का कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा। कबीर जी नूं पुछया सी, भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नरक भी निंद दिते, ते चरणा दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी, भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे, कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सका भाई चरणा दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नूं बयान कर भी देवां, वो सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नूं कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नूं मिठाई खवा दिओ तां वो की दसेगा, कच्छा ही मारेगा, नचेगा, पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नूं हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नूं पता है भाई। जे तू भी उस मौज नूं मानना चाहुंदा है, उसका आनंद वेखना चाहुंदा है, तां फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नूं जिन्हां नूं चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुठा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़ियां होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे, गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदे कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे, जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए, तां फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई, भई चरणा दी प्राप्ति हो गई, फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है, असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे, पर उस दा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है, ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे, चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे, गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लेना, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस, ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाईदा। ते महापुरख कहन लगे, चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लिओ। इसलिए जिन्हां नू स्वाद आ गया है,
ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।

जे इतने इतने साल बिता चुके हैं ते की कदी असी अपने शरीर बारे सोचे कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे। अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती हुंदी ते साडा जीवन कहो जिहा हुंदा। धन दौलत सुख दे समान कितने भी होन, रंग रूप सब कुछ होवे, पर जे जबान नहीं।

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना के बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा ओ भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है, ए ते

अपनी जुबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु

बच्चे दा पहला गुरु उस दी मां हुंदी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मामा ही बच्चियां दा जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते बाल भी कुहाड़ा सिर तों तां चुकिया, लगे हन इन्हां नूं।

नरक का नजारा भी दिखाया उसे। कहने लगा मां नरक भी है स्वर्ग भी है पाप भी है पुण्य भी है पर तू ये दस अंत वेले मेरी सहायता करेंगे। ते मां ने कहा बेटा मैं तेनू पालिया